0: ആകാശവാണി. ഇപ്പോൾ സമയം 10 മണി കഴിഞ്ഞ് 54 മിനിറ്റും 40 സെക്കൻഡും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മൻ കി ബാത്. പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ആകാശവാണിയിലൂടെ നടത്തുന്ന പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണ പരിപാടി ഡൽഹിയിലെ, തുടർന്ന് മലയാള പരിഭാഷ.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी है.
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है. बुद्धि तो एक तलवार के समान है. जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है. इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता. इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है.
3: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर. कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप.

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
7: कहाँ से पता चलेगा
6: उद्गम से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ
4: आज ही सर्च करूंगा
6: तो आज की चाहे तेरी तरफ से
8: RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
9: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
10: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
11: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं देश की उपलब्धियों की बात करते हैं भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा साथियों आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था साथियों पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था समय बीतने का इंतजार किया जाता था अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं साथियों इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं

अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था, और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के

साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार
हम अपनी विरासत को

और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है।

युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।

यानी ODOP के माध्यम से यहां आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है,

0: जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं, यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: मन की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ആകാശവാണിയിലൂടെ നടത്തിയ പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്.
4: ആകാശവാണി മൻ കി ബാത് അഥവാ മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം.
5: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ മൻ കി ബാത് പരിപാടിയിലൂടെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മൻ കി ബാത് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകവും പ്രചോദനകരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേദിയൊരുക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് നാളെ 10 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ആ നേട്ടമാണ് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്. 10 വർഷം മുമ്പ് 2016 സെപ്റ്റംബർ 28-നും 29-നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരവാദ

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में ये वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं,

बच्चे की उम्र बढ़े तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाएं। कोई भी समस्या हो उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: ലംഹേ സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടി വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:45.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितम्बर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: യേശുദാസും ചിത്രയും പാടിയ ഗാനം രചന കൈതപ്രം, സംഗീതം പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ്, ചിത്രം ഇന്നലെ.

0: സമയം 11 മണി കഴിഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ വിവിധ ഭാരതി റിലേ കേൾക്കാം.
1: ഗുരുദത്ത് സാഹബ് സേ ഗുരുദത്ത് സാഹബ് കെ സാത്ത് ഉനോനെ ഏക് ജിസ്കോ കഹതേ ന മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡെവലപ് കി
2: ആപസ് മേ യേ തയ് ഹുവാ
1: തയ് ഹുവാ तो देव साहब को मौका मिलेगा और अगर देव साहब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो गुरुदत्त जी रहेंगे. तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग सोची और ऐसा हुआ भी. श्रद्धा, शुरुआती जो फिल्में थी ना देव साहब की, वो सब विमेन ओरिएंटेड जो फिल्में थी वो रही.
2: नायिका प्रधान ये फिल्में थी विद्या, जीत, शायर, अफसर और सनम.
1: और इन तमाम सारी फिल्मों में उनके साथ लीड रोल में सुरैया जी हुआ करती थी. और ये जो जोड़ी थी देव साहब की और सुरैया जी की, ये भी बहुत मशहूर हुई. बहुत सारी बातें हैं, क्या करें और क्या छोड़ें. एक फिल्म हमें याद आती है 1948 यानी 1948 में आई थी फिल्म जिद्दी, जिसमें उनके ऑपोजिट थी कामिनी कौशल जी. और एक गीत है इस फिल्म का, जिद्दी का, जो उन पर फिल्माया गया, जो पहला डुएट लता जी और किशोर जी का भी था
2: जी.
1: वो गीत था ये कौन आया.

0: इसके अलावा इसी फिल्म में किशोर कुमार का भी बहुत मशहूर गीत था, मरने की दुआएं क्यों मांगू।
1: वाह वाह,
0: है ना। तो श्रोताओ, देव साहब की ये जो अभिनय यात्रा है, इसके बारे में हम और क्या बात करें। मुझे लगता है कि हमारे पिटारे को एक बार फिर हम खोलते हैं और अपने श्रोताओं को देव साहब की वो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हमने बहुत संभाल कर रखी है, जिसमें आप सुनेंगे उनकी आवाज।

मैंने यूरोप, अमेरिका, रशिया, फार ईस्ट इन सब जगहों के कई बार दौरे किए हैं। वहाँ के लोगों से मिला हूँ, उनके काम करने, फिल्में बनाने के तरीकों को करीब से स्टडी किया है। वहाँ के काफी कलाकारों, लेखकों, डायरेक्टरों और फिल्म बनाने वालों से मेरी वाकफियत है, जान पहचान है। आपको याद होगा नोबेल प्राइज विनर लेखिका स्वर्गीय पर्ल बक के साथ मिलकर मैंने गाइड फिल्म बनाई थी। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनी थी। अंग्रेजी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए और हिंदी फिल्म अपनी हिंदी जनता के लिए। गाइड फिल्म का अंग्रेजी वर्जन एक अमेरिकन डायरेक्टर ने तैयार किया, लेकिन मुझे उससे तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसे हिंदी में डब करने के बजाय फिर से बनवाया, हालांकि उस पर खर्च बहुत पड़ा। लेकिन खर्च तो पैसा होता है, फिल्म बनाने में बेशुमार पैसा जाता है, खासकर जब कहानी का फैलाव या कैनवस बड़ा हो। गाइड को फिल्माने में भी बहुत पूंजी खर्च हुई, लेकिन मैंने बहुत से सबक भी सीखे। मैंने महसूस किया कि अगर आपको अपने ख्यालात, अपने आइडियाज पर्दे पर लाने हैं तो आपको लेखक भी होना चाहिए और डायरेक्टर भी। आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी विचारधारा में जभी रहेगा जब आप खुद अपने ही जरिए उस नजरिए को दुनिया के सामने लाएं। इसलिए जरूरी हो जाता है सालों के एक्सपीरियंस के बाद, अगर किसी आर्टिस्ट में काबिलियत और इमेजिनेशन और स्टडी और सोचने का मादा हो कि वो खुद लिखे और खुद डायरेक्ट करे अगर उसे नए नए ढंग की फिल्में बनानी है तो। इसीलिए मैंने भी डायरेक्शन शुरू कर दी और सबसे पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की उसका नाम था प्रेम पुजारी। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई हरे राम हरे कृष्ण, जिसे मैंने खटमंडू में शूट किया और जिसे फिल्माने में भी मुझे बहुत ही मजा आया। उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई हीरा पन्ना, लेकिन इस मुलाकात में आपको अभी एक प्रेम पुजारी का गाना सुनाता हूं।

कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए? गिनेंगे जब सांस देने के लिए थोड़ा दम लेना होगा। लेकिन अपनी कंपनी में नवकेतन के झंडे तले मैंने कोई 25 फिल्में बनाई और अभी बहुत सी फिल्में और बनानी है। बहुत से आइडियाज है मेरे दिमाग में, न जाने कितनी कामयाबियों का जश्न मनाए बिना और नाकामयाबियों का मातम किए बिना आगे बढ़ता हूं।

0: गया।
1: क्या बात है मनीषा जी, देवानंद साहब की ये जो रिकॉर्डिंग हम सुन रहे थे इसके आखिरी हिस्से में जो गीत बजा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म हम दोनों का गाना।
2: उन्होंने तो जिंदगी का साथ निभाया भी और जिंदगी ने भी बखूबी उनका साथ निभाया। अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किया और अपनी एक खास जगह बनाई। नवकीर्तन इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले न जाने कितनी फिल्में और भी आपके जहन में कौंध रही होंगी। ऐसे महान कलाकार को आज हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। और अब जैन जी सुनते हैं एक गीत गुपचुप, और ये जो गीत है ना इसमें फिर एक बार चांद से कुछ इसरार किया है। क्या इसरार किया है? इसको सुने और हमारे श्रोता अंदाजा लगाएं कि हम अगली बात किसकी करने वाले हैं।

0: ये बहुत ही रोमांटिक गीत फिल्म सजा का आवाज संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की।
1: क्या बात है, हेमंत कुमार साहब की आवाज में गीत सुने तो देव साहब की याद आ जाती है, देव साहब को याद करें, उनकी किसी फिल्म का गीत याद करें तो हेमंत कुमार की याद आ जाती है।
0: और ये एक विचित्र संयोग भी है कि 26 सितंबर देव साहब का जन्मदिन है और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय यानी हमारे हेमंत दा का स्मृति दिवस भी। हेमंत दा 26 सितंबर 1989 को हम सबको अलविदा कहकर चले गए, लेकिन हेमंत दा की आवाज आज भी हम सबको प्राणवान किए रहती है।
1: जी मनीषा जी, हेमंत दा के बारे में अपने श्रोताओं को हम बताएं कि वाराणसी में उनका जन्म हुआ था 16 जून 1920 को। फिर ये परिवार कलकत्ता आ गया और वहीं उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई, कॉलेज की पढ़ाई हुई।
0: और बंगाल के एक गायक थे सुभाष मुखोपाध्याय, जो हेमंत दा के बहुत अच्छे दोस्त बचपन के साथ ही। इसके अलावा थे संतोष कुमार घोष, जो कविताएं लिखते थे, और हेमंत कुमार मुखर्जी, जिन्हें हम हेमंत दा कहते हैं, वे शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियां लिखा करते थे। और श्रोताओं, बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका की एक मैगजीन है देश, जिसमें उनकी कहानियां छपी भी।
1: मनीषा जी, उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और इसके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला तो लिया था, मगर वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी।
0: कैसे कर पाते पढ़ाई इंजीनियरिंग की, जब वो बनना चाहते थे एक संगीतकार, एक गायक, बल्कि गायक ज्यादा। और हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय पंकज मलिक का स्वर गूंजा करता था और उनसे लगभग सभी गायक बहुत प्रभावित रहे। और हेमंत दा तो पंकज मलिक जी के गायन से इतने प्रभावित थे कि जब वो गाते थे तो लोग उन्हें छोटो पंकज यानी छोटा पंकज कहके भी बुलाया करते थे।
1: जी, और ये 1935 की बात है, आकाशवाणी के लिए, ऑल इंडिया रेडियो के लिए हेमंत दा ने पहला गाना रिकॉर्ड किया था
0: और ये गीत था आमार गाने ते एले नव रूपे चिरंतुनी। हेमंत दा के मेंटर यानी उनके गुरु थे शैलेश दत्त गुप्त, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पंकज मलिक जी का असर उन पर बहुत ज्यादा था। श्रोताओ, फणीभूषण बैनर्जी, जो स्वयं फैयाज खान साहब के शिष्य थे, उनसे हेमंत दा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। और इनका जो पहला हिंदी रिकॉर्ड ग्रामोफोन कंपनी इंडिया कोलंबिया के नाम से निकला था, इसमें दो बहुत मशहूर गीत हैं। आइए इन दोनों गीतों की झलक सुनते हैं।

कमल दास गुप्ता जैसे महान संगीत निर्देशक और फयाज हाशमी के वो अमर गीत हम कैसे भूल सकते हैं। अब हेमंत दा के गाए कुछ बेहद लोकप्रिय गीत हैं, कुछ गजलें भी हैं जो हमारे श्रोताओं को हम सुनवाना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में तमाम सारे गीत और उन गजलों का समावेश करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ एक गुलदस्ता जरूर उन यादों का महकता हुआ हम आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं।

0: कुछ भी नहीं।
1: लता जी के बारे में कहा जाता है कि लता हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। मैं भी मानता हूँ वरदान ही है। मैं जब पहले पहले बॉम्बे आया आनंद मठ के संगीत बनाने के लिए, तो वंदे मातरम संगीत जब ट्यून कर लिया तो मैं बोला फिल्मिस्तान को कि मुझे लता चाहिए। तो लता से हमारा कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था, मैं सीधा पहुंच गया लता के घर में। लता बोला मैं जरूर गाऊंगी, और जरूर गाऊंगी नहीं, रिहर्सल बहुत दिया, और गाना जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन उसका दूसरा रिकॉर्डिंग था। मुझे याद है कि 21 टेक मैंने किया था। तो मैं डर रहा था, लता ने कहा दादा अब डरिए मत, आपका गाना गा के मैं जाऊंगी। हमेशा लता का क्या है, मैंने देखा कि कोई नए म्यूजिक डायरेक्टर जब भी आता है ना, तो उसके लिए वो बहुत कोऑपरेट करती है।

स्वर्गीय गुरुदत्त अपनी फिल्मों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे, लेकिन गुरुदत्त का क्या था कि वो उसके फिल्म के लिए जिसको चाहिए उसी को लेते हैं, कोई दोस्ती वो बिलीव नहीं करते थे। अपने कामों में वो जैसे हम लोग कहते रूथलेस, किसी को लिया भी पसंद नहीं हुआ हमेशा जितना भी दोस्त हो वो कैंसिल करते थे। तो जो पहले पहले मुझे बोला गुरु पिक्चर बनाओगे, मैंने कहा नहीं, तुम हमको लेके फिर तुम निकाल दोगे मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार बोला था कि देखो तुमको हम लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो साहब बीबी और गुलाम बना रहे थे मुझे बुलाया, मैं गुरु को कहा देखो गुरु गड़बड़ मत करना, तुम एक गाना रिकॉर्ड करोगे फिर बोलोगे अच्छा नहीं लगता है। बोले नहीं, ये फिल्मों के लिए तुम्हें मैंने इसीलिए चुना कि तुम ही ये कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट बंगाल का सब्जेक्ट है और तुम इसको सबसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो।

उस जमाने में क्या था, मैं चाहता था कि मैं कलकत्ता वापस जाऊं। मैं कलकत्ता से आया था बॉम्बे में इन 1951 आनंद मठ का म्यूजिक के लिए, और दिल नहीं लगता था इधर। लेकिन एस मुखर्जी ने कहा कि तुम्हें एक फिल्म हिट जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद और दो पिक्चर बनाया, उसके बाद आया नागिन। नागिन में जो सबसे मशहूर चीज है बिन, तो वो जो बिन मैंने सोचा कि कैसे बिन इस्तेमाल करूं, तो वो जो बिन बजाने वाले सपेरे होते हैं ना, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलना बहुत मुश्किल है, और दो तीन नोट बजाते हैं। तो उस जमाने में कोई एक पिक्चर बनी थी नाग पंचमी, मैंने सुना कल्याण जी आनंद जी अभी जो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है, उस टाइम में हारमोनियम और क्लेवियोलाइन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। मैं कल्याण जी को बुलाया, तो क्लेवियोलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में एक के एक नोट प्रेस करने के बाद दूसरा नोट में वो गैप होता है, और बिन क्या है, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं सोचा क्या करूं, तो मैं हारमोनियम मिक्स किया, हारमोनियम और क्लेवियोलाइन मिला के बिन बनाया। और वो पहले पहले जैसे सभी वो कै कै कै एक ही ट्यून बजाते थे, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोला कि बदलो। मैंने कहा देखिए गाना आप 10 दफा कीजिए, लेकिन हमारा फीलिंग है कि ये जो एक ही जो मोनोटोनस ट्यून है ये सबसे अच्छा लगेगा, और भगवान की दुआ से वो बहुत ही काबिल हो जाएगा।

म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हमारा बहुत पुराना दोस्त है। एक किस्सा मुझे याद आया, बड़े मजे की बात। कल्याण जी नागिन के बाद बहुत प्रोग्राम करते थे, वो बीन लेके और ट्रूप लेके। तो एक वो नागपुर के अंदर कोई गांव में चले गए और उधर 20-30 हजार लोग बैठे हैं और बीन सुनेंगे ये तो शोर मचा। कल्याण जी तो अपना क्लैवियोलिन सजा के बैठे, बजाना शुरू किया, शोर मची। कल्याण जी घबरा गए, बोले बात क्या है? तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में ये पता चला, वो लोग कहते हैं गांव वाले कि बीन तो ऐसा नहीं बजता, बीन तो ऐसा बजता है, मुंह से बजाना जाता है, तो आप हाथ से क्या बजा रहे हैं? तो फिर उसको बोलना पड़ा कि जो आपने नागिन में देखा सुना वो क्या है, वो ऐसे ही बजाया। फिर मान लिया।

1964 में मुझे मौका मिला वेस्ट इंडीज जाने का। उधर से निमंत्रण आया और मैं भी तैयार हो गया। वेस्ट इंडीज में जमैका, त्रिनिदाद, सुरिनाम, ब्रिटिश गायना इत्यादि छोटे छोटे द्वीप होते हैं, और उधर हम लोग जिसको इंडियंस कहते हैं, भारतीय बहुत है, वो जो इंडियंस हैं वो 18th century वैसा कुछ होगा उधर से पहुंचा था आके, और वो लोग नाम इंडियन है लेकिन भाषा नहीं बोल सकता। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जमैका, त्रिनिदाद में अंग्रेजी बोलते हैं, ब्रिटिश गायना में अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन सुरिनाम जो जगह है ना वो डच गायना है, वो बिहारी हिंदी बोलते हैं और डच बोलते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ, एक तो जो रिसेप्शन और ये और वो, जैसा कि कहां से कितने बड़े आदमी आ गए, मैं तो ताज्जुब हो गया था, अच्छा भी लगा था। और एक छोटी छोटी जो इंसिडेंट मुझे याद है कि कोई आके कहा कि ये लिबास आपने जो पहनते हैं हम लोग देखा ही नहीं, ऐसा इंडियन भारतीय देखा नहीं। और बच्चा और कोई आदमी बहुत से ऐसे आए जो कहते हैं कि आप हमको इजाजत देंगे आपको छू लें। मैं क्यों, हम लोग भारतीय हैं, भारत को कभी देखा नहीं, फिर आपको छूने से हमको लगेगा कि अपना देश का एक आदमी को छुया और भारत को देखा, ऐसा कोई फीलिंग। मुझे तो रोना आ गया था ये सब सुन के। तो मैं पहला आर्टिस्ट जो कोई नहीं जाता था उधर, मैं पहला आर्टिस्ट गया था जिसलिए इतना इज्जत और रिसेप्शन मुझे मिला। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय होने का गौरव मुझे उस दिन मालूम हुआ था। सच्चाई तो ये है कि मुझे भारतीय होने का अभिमान है।

महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार की ये रिकॉर्डिंग विविध भारती के खजाने को समृद्ध करती है और इस रिकॉर्डिंग को हमने आपको आज फिर सुनाया। श्रोताओं, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब एक ऐसी आवाज का जिक्र जो फिजाओं में गूंज रही है अब तक।

0: मनीषा जी, इस मधुर आवाज को कौन नहीं जानता, कौन नहीं मानता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, 27 सितंबर 2008 को हम सबको अलविदा कहकर चले गए थे पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जी। 9 जनवरी 1934 को
0: अमृतसर में महेंद्र कपूर साहब का जन्म हुआ था और ये परिवार बाद में मुंबई आ गया।
1: जी हाँ, और पंडित हुस्नलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ,
0: उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा कपूर जैसे गुरुओं से तालीम पाकर महेंद्र कपूर साहब समृद्ध हुए थे।
1: जी हाँ, और महेंद्र कपूर जी की आवाज में देशभक्ति रचनाओं ने तो धूम मचाई ही मचाई। उनके रोमांटिक गीत भी बहुत बहुत लोकप्रिय हुए और अब तक हमारे दिलों में जगह बनाई हुई है।
0: और जहां तक फिल्म संगीत की बात है मनीषा जी, महेंद्र कपूर साहब रफी साहब को अपना गुरु मानते थे।
1: जी हाँ, और बहुत असर उन पर रफी साहब का था भी। एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है जो महेंद्र कपूर साहब ने अपने इंटरव्यू में भी जिसका जिक्र किया है। ऑल इंडिया मर्फी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यंग कलाकारों का, युवा कलाकारों का, उस कॉम्पिटिशन में बहुत से लोग अपीयर हुए थे और उसमें से एक थे महेंद्र कपूर जी और एक थी आरती मुखर्जी, जो दोनों फर्स्ट आए थे। आरती जी ने अपने इंटरव्यू में भी विविध भारती को इस बारे में बताया था। तो महेंद्र कपूर जी भी इसी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आए थे और उस जमाने में बहुत सी यादें हैं जो आप खुद रिकॉर्डिंग में हम आपको जो सुनवाने वाले हैं उसमें सुनेंगे, लेकिन एक बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हुआ क्या था।
0: उस कंपटीशन को जीतने के बाद इन्हें फिल्म नवरंग के गीत गाने का अवसर मिला
1: और वो गीत था आधा है चंद्रमा रात आधी।
0: इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई। इसी दौरान 1958 की बात है, फिल्म सोहनी महिवाल का गीत चांद छुपा और तारे डूबे नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर से गवाया।
1: और सोहनी महिवाल पहले रिलीज हुई है ना?
0: जी हाँ, यानी फिल्म नवरंग का गाना पहले रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो गाना सबसे पहले पर्दे पर सुना श्रोताओं ने वो था फिल्म सोहनी महिवाल का गीत।
1: और वो गीत बहुत मशहूर हुआ, उसमें उनकी रेंज देखते ही बनती है श्रोताओं। ऐसे गायक महेंद्र कपूर जी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आज हम उनको याद करते हैं और उस रिकॉर्डिंग के संपादित अंश सुनते हैं जो विविध भारती के साथ उन्होंने अपनी खास मुलाकात में हमसे बांटी थी, हमसे शेयर की थी, उनसे बातचीत की ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं उस कार्यक्रम के संपादित अंश।
2: बचपन मेरा म्यूजिकली था क्योंकि वो गिफ्ट मुझे मेरी मदर से मिली थी। मेरी मदर खुद बड़ा अच्छा गाती थी, उनकी बहुत अच्छी आवाज थी, नॉट प्रोफेशनल लेकिन एज एन एमेच्योर। और मेरे बड़े भाई साहब को भी बहुत शौक था म्यूजिक का। हम लोग जब छोटे थे नूरजहां जी का गाने गाया करते थे
1: जी।
2: गाने का शौक मुझे बचपन से ही था। प्रिपेरेटरी में मुझे दाखिल किया फादर ने, तो वहां टीचर ने मुझे अभी तक याद है कहा कभी कोई बच्चा गा सकता है या पोइट्री रिसाइट कर सकता है तो कम ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं सेंट जेवियर स्कूल का पढ़ा हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। अब मैं बच्चा अबाउट आई थिंक 5 साल का होऊंगा है जी, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। तो टीचर ने बच्चों को सबको इशारे किए कि तालियां बजाओ साथ में, सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। उसके बाद हमेशा जब भी फंक्शन होते थे तो मेरे दोस्त सब जो बन गए थे सब यही कहा करते थे, वी वॉन्ट कपूर, वी वॉन्ट कपूर।
3: आगे बढ़ने से पहले कोई बचपन का ही गाना सुन लिया जाए।
2: बचपन का गाना मैं सुना देता हूँ, वो जो मैंने प्रिपेरेटरी में

0: अब स्कूल में भी मशहूर हो गया, मैं कागज पे लिखूं मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी। अच्छा। तो लड़कों को पता चल गया कि ये मोहम्मद रफी का फैन है। तो एक दोस्त है मेरे ने, जैसे स्कूल छूटा मुझे कहता है कपूर तेरा रफी कहाँ रहता है, मुझे मालूम है। तो मैं उसको पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे बता कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भिंडी बाजार रहते हैं और किताब मंजिल नाम है, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, उनके मकान के सामने मस्जिद है। तो मेरा ड्राइवर मुसलमान था मोहम्मद, तो घर जाने के बजाय मैंने मोहम्मद से कहा, मैं कहा मोहम्मद तू चल उधर भिंडी बाजार। उन्होंने कहा बाबा उधर क्या करना जाकर, उन दिनों रायट्स हुआ करती थी। कहा मैं नहीं जाऊंगा, वो भाऊजी मारेंगे मुझे। अरे मैंने कहा नहीं मारेंगे तू चल। मैं ले गया उसे, ऊपर जाने से पहले मैंने कहा बताना नहीं कि मुझे गाने का शौक है, यही बताना कि इसके बड़े भाई को शौक है
1: जी।
0: तो उसने कहा अच्छा। ओ हम लोग दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो बाहर लिखा हुआ था मोहम्मद रफी उर्दू में प्लेबैक सिंगर। तो अंदर किसी के गाने की आवाज आ रही थी, मुंह धो रहे थे, तो हमने बेल बजाई तो रफी साहब बाहर आ गए, बनियान पहनी हुई और तहमत पहनी हुई, हंसते हंसते उन्होंने कहा आइए। तो मोहम्मद मेरे ड्राइवर ने कहा जी ये मेरे सेठ का लड़का है और इसके बड़े भाई को गाने का शौक है, तो वो मिलना चाहता है आपसे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ से हैं। मैंने कहा जी मैं पंजाब से हूँ। अरे बोले पंजाब से कहाँ से। मैं कहा जी मैं अमृतसर से हूँ। अरे बोले मैं भी अमृतसर का हूँ, आज तक पंजाबी है। मैं कहा हाँ जी। कहा ऐसे करो आप लोग बड़े भाई साहब को ले आओ, पिताजी को जरूर लाना संडे के दिन है, तो फिर बात करेंगे। हम लोग आ गए वापस संडे के दिन, मैंने सबको सुनाया घर पे, सब एक्साइटेड हो गए कि मोहम्मद रफी को मिला है ये। मेरे पिताजी भी, उनको भी बड़ा शौक था। तो मैं मेरे बड़े भाई साहब और पिताजी हम लोग गए वहाँ रफी साहब के यहाँ। वहाँ गए और उनके बड़े भाई साहब का नाम था हमीद भाई, तो उन्होंने कहा कि भौजी आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए, वरना यहाँ कई लड़के आते हैं बच्चे आते हैं अपना घर बार छोड़कर और फिर इल्जाम हम लोगों पर आता है, ये पहली बार आप आए हैं, पेरेंट्स आए हैं साथ में, तो रफी जितना जानता है जरूर सिखाएगा इनको मेरे बड़े भाई साहब को
1: जी।
0: तो इतनी देर में उन्होंने कहा रफी वो हारमोनियम निकाल। तो एकदम मैं उठा हारमोनियम निकालने के लिए और रफी साहब ने चटाई बिछाई, तो हमीद भाई बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा ठहरो ठहरो एक मिनट भाऊजी सच्ची बताना गाना किसने सीखना है, ये बड़े ने सीखना है या छोटे ने, किसको शौक है। उन्होंने कहा जी वो छोटे ने सीखना है। तो मैं समझ गया था ये उस्ताद को इसने तकलीफ नहीं दी हारमोनियम उठाने की, ये खुद हारमोनियम उठा के लाया। तो रफी साहब ने फिर मुझे सुना, फिर उन्होंने खुद गाया, फिर वो प्यार बढ़ता गया, फिर रफी साहब ने मुझे गाइड किया। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ तक मेरे गाने गाएगा महेंद्र, तू बेटा क्लासिकल सीख। फिर मैंने क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया
1: जी।
0: और वैसे ही खयाम साहब के साथ प्यार था मेरा बचपन से ही, है जी, कराती तो कुदरत है भगवान कराता है
1: जी।
0: तो खयाम साहब ने मुझे सबसे पहले मौलाना नियाज अहमद खान साहब वो लगवा के दिए, उनसे मैंने शुरू किया, फिर कई उस्ताद आए, कई उस्तादों से सीखा मैंने क्लासिकल।
1: महेंद्र कपूर जी मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता एक हुई थी,
0: वो तो कॉलेज जब मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था, उसमें 5 जजेस थे, अनिल विश्वास जी, सी रामचंद्र जी, वसंत साई जी, मदन मोहन जी और नौशाद साहब। तो ये 5 जजेस को जज करना था
1: अच्छा।
0: थ्रू आउट इंडिया में से कौन सा लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी, तो सुनते सुनते ये लोग मतलब शॉर्टलिस्ट करते गए, तो शॉर्टलिस्ट में लकीली मेरा नाम भी आ गया महाराष्ट्र से, और लड़की आरती मुखर्जी उनका नाम आया कलकत्ता से। अच्छा 4 लड़के और 4 लड़कियां चुनी गई। अब फाइनल्स जो थे वो मेट्रो सिनेमा

0: थे, वहां आपस में झगड़ा हो गया म्यूजिक डायरेक्टर्स का।
1: अच्छा,
0: वो कहें ये अच्छा है, वो कहें ये अच्छा है। तो नौशाद साहब ने कहा ऐसे करते हैं, आज शाम को महबूब स्टूडियोज इनको बुला लेते हैं। तो रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब थे कि भी जो कौशिक साहब डिसाइड करें वो अच्छा है, क्योंकि इनाम में हम लोगों को फिल्मी गाने मिलने थे, एक गाना मिले या एक लाइन मिले, मतलब फिल्म में काम मिलना था
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा ये जो माइक्रोफोन है मेट्रो का इसमें समझ नहीं आएगी। तो हम लोग शाम को चले गए, आगे पर्दा लगा दिया गया, कोई शक्ल नहीं देख सकता था हमारी, नाम भी नहीं बताना, आई एम नंबर 45 तो गा दिया, किसी ने आई एम नंबर 67 उसने गा दिया। तो गाना खत्म हो गया, उसके बाद कौशिक साहब ने कहा भाई ये 45 अच्छा है लड़का और लड़कियों में ये नंबर अच्छा है। अब म्यूजिक डायरेक्टर को मानना पड़ा कि ठीक है, तो लकीली वो मेरा नंबर था 45, मैं जीत गया। सबसे पहले मुझे गाना जो गवाया नौशाद साहब नहीं, सोहनी मेवाल, चांद छुपा तारे डूबे रात गजब की आई, वो सुपर ड्यूपर हिट हुआ और 6 मिनट का गाना था, बड़ा ऊंची मतलब स्वर का था। और नौशाद साहब का बड़ा पन है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से पेश किया कि इंसान तो नर्वस हो जाता है ना, लेकिन उन्होंने मुझे नर्वस नहीं होने दिया, बड़े अच्छे तरीके से मुझे गवाया।

असल में उन्होंने मुझे कराई 6-7 दिन घर पे अपने। उन्होंने जब मुझे पहली बार बुलाया ना इस गाने के लिए, तो उन्होंने कहा महेंद्र ऐसा है बेटा, फिल्म सोनी महिवाल है, इसके म्यूजिक पूरी ले चुका हूँ मैं, बैकग्राउंड म्यूजिक तक हो गया है, अब इसमें एक मुश्किल आता है। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि इसकी सुर जो है ना वो मैं बदल नहीं सकता इस गाने की, और ये गाना बहुत ऊंचा जाएगा, तुम जा सकोगे? मैंने पैरों को हाथ लगाया, मैंने कहा जी आपके आशीर्वाद होंगे तो चले जाऊंगा पापा जी। सुर क्या है? तो उन्होंने कहा ये सफेद 3 है, इसकी मध्यम में जाना है, मध्यम तक। मैं कहा अच्छा जी कोशिश करूंगा। तो रिहर्सल होती रही, तो आखिरी दिन मैंने अगले दिन रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, खत्म हो गई रिहर्सल घर पे, तो नशा साहब मुझे कहते हैं 5 मिनट रुको महेंद्र। इन्होंने नमाज पढ़ी, मुझे नहीं लगता ऐसा लायक म्यूजिक डायरेक्टर जो आर्टिस्ट को संभाले होगा कभी। नमाज पढ़ के इन्होंने कहा महेंद्र बेटा रिहर्सल शो हो गई, कल है रिकॉर्डिंग, मैंने एक चीज मांगनी है तुमसे, हाथ जोड़कर। और मैं घबरा गया कि क्या मांगना है इन्होंने। मैं पापा जी क्या मांगना है, आप जो कहेंगे, तुम मेरी कल इज्जत रख देना। और मेरे तो जमीन निकल गई पैरों तले कि पापा जी क्या कह रहे हैं।

0: और शाह साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने गले लगा लिया। अरे वाह मियां, तुम तो बहुत अच्छा गाए, ये यादें हैं।
1: अच्छा महेंद्र कपूर साहब, जब थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था मर्फी मेट्रो प्रतियोगिता की, उसमें जज के रूप में नौशाद साहब भी थे, सी रामचंद्र जी भी थे। सी रामचंद्र के साथ आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, जैसे नौरंग फिल्म का गाना है
0: जी,
1: आधा है चंद्रमा, कोमल कोमल वरण,
0: ये आशा जी के साथ मैंने पहली बार गाया
1: जी
0: था।
1: तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं?
0: इसमें ममता जी, ये आधा है चंद्रमा एक्चुअली रिकॉर्ड सबसे पहले मेरे कैरियर का ये हुआ, नौशाद साहब का बाद में हुआ, लेकिन नौशाद साहब का गाना क्योंकि पिक्चर कंप्लीट थी वो पहले रिलीज हो गया। आधा चंद्रमा के वक्त मैं गा रहा था आशा जी के साथ, अब नर्वसनेस वैसे ही कि आशा जी हैं साथ में
1: जी।
0: और उन दिनों ये लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं करते थे, राजकमल, ये शूटिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड

0: उम्मीद है श्रोताओं सुप्रसिद्ध गायक महेंद्र कपूर साहब की ये विशेष रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई होगी।
1: और अब विविधा का अंक समेटने का वक्त आ गया है जयंत जी, अगली विविधा के लिए अब हमें तैयारी भी करनी है, तो आप सभी से आज के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत चाहती हूं मैं, आपकी दोस्त मनीषा जैन
0: और मैं जयंत पात्रीकर, हम दोनों का आपको नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता निर्देशक, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है, जिन्होंने यशराज फिल्म्स की स्थापना की और बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों को एक नई दिशा दी। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित यश चोपड़ा। और उनके साथ ही हम याद करेंगे पार्श्व गायक, हिंदी फिल्मों में 5 दशक

से अधिक समय तक काम करने वाले, जिन्हें मुख्य रूप से उनके देशभक्ति गीतों के लिए भी याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री महान गायक महेंद्र कपूर को। तो कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरि का, फिल्म का नाम है डर।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुने अगला गीत। महेंद्र कपूर की आवाज में नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों

0: उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो

0: भी लिखा, वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कास्ट करते हैं और उनमें से आपको शब्द ढूंढने होते हैं और गाने चुनने होते हैं और साथ में आपकी अपनी टिप्पणियां साझा करनी होती हैं। और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है, तो एक बार इबारत हम दोहरा देते हैं जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले, कहाँ घूमे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, नहीं नहीं वहाँ चले जहाँ मिलता है सुकून, कहाँ जहाँ तुम कहो, ये कहाँ आ गए हम और फिर तुम कहो, चलो सजना जहाँ तक घटा चले फिर ऐसी वादियों में चलेंगे जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हो और कोई धीमी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हो, कहाँ कहीं रुकेंगे, हाँ जहाँ नदी का पानी इतना साफ हो कि उसमें आसमान भी अपना चेहरा देखे और अगर शाम हो गई तो चांदनी को साथ लेकर किसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इतना घूमना किसके नाम, पर्यटन के नाम, या ये सफर तो बस दिल के नाम है। और अगर रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो मुस्कुराकर कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली उस दुनिया की तलाश में जहाँ सफर भी कहानी हो और मंजिल भी। फिल्मी हो गए हो आज तो क्या करें, यश जी की फिल्मों ने ही तो सिखाया है कि पहाड़ों के बीच भी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बस सकती है। तो फिर अगला पड़ाव जहाँ तुम हो वहीं से सफर शुरू। तो चलो तुम हम और ये वादियाँ कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच, लेकिन वादा करो नदी के पानी को साफ सुथरा रखेंगे, एक कागज की कश्ती तिराएंगे और खुद भी एक कश्ती में बैठ चलेंगे नदी के उस पार जहाँ ऊंचे पर्वत के दायरे होंगे। दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज के शब्द कौन से हैं और गाने कौन से हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप गाने सुझाते रहिए और वो गाने हम अपनी प्लेलिस्ट में डालते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। वैसे आज की जो इबारत है उसमें एक एक शब्द पर एक एक गाना है, तो ढूंढिए वो गाने भी, जरा गाने भी तो लिख डालिए। आपने पर्यटन के बारे में लिखा है, घूमने के बारे में, वादियों के बारे में, ये तो लिखते रहना है, लेकिन गानों के बारे में भी लिखना है। अब जरा बूझिए कि पहला वाला गाना कौन सा हो सकता है। अब आपने तो बूझ ही लिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी डाला है कि आज यश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो लगता है आज की इबारत में यश जी को याद किया जाएगा। और एक शायद आप भूल रहे हैं, आज तो महेंद्र कपूर की याद का दिन भी है और आज पर्यटन दिवस है, नदी के दिन को याद किया जा रहा है, तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए इन मिली जुली बातों के साथ हम सफर पर चलते हैं, सुरीला सफर। तो बताइए कौन सा वाला गाना होगा और इस गाने में कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए फटाफट। फिल्म कभी कभी, गाना कौन सा, पहचान लिया कि नहीं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, गीतकार कौन बताइए।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत

कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन, श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही। और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं, ये पर्वतों के दायरे, ये कहां आ गए हम, नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहां तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये पर्वतों के दायरे, और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी भी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया। तो जरा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहेली है आपको बूझनी है। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है, तब जगह चाहे कोई भी हो सफर सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नजारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिन्दी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियां, खूबसूरत कुदरत के नजारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नजारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारें नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये

प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहाँ प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लू मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना। बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरी गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें। बोरीवली, मुंबई, सागर किनारे, दिल्ली पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं। विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली, मुंबई, समंदर किनारे, सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? और हाँ, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही, तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और। हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया, सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं। आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे। डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई, आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहां की यादें साझा कीजिए और वहां के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे। अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताजा करिए। और अगर आप सफर पे गए हैं और किसी पहाड़ पर किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफर कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नजारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहां भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर। ये बहुत जरूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहां जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं वहीं जहां पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था चलो सजना जहां तक घटा चले। तो कहां तक घटा है और कहां तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए, बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहने यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूं। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमी आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यूजर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहां यश चोपड़ा की फिल्मों की है लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है, तो चलिए।

पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं? अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए, क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें जरा ये भी बताइए कि आपके शहर या गांव के आसपास कौन सी जगह है जहां लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहां पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं? कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहां कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको पूछना है फिल्म का नाम और आवाज किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार

राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा। वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सपरिवार। हमने शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहां पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहां की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियां, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें। पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है। सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम बूझिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूं, यहां के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहां की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था। आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे, भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफर का यह सफर चलता रहता, लेकिन क्या करें। जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है। कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सके या आपसे और कोई सवाल पूछ सके। तो बस आज का सफर बस इतना है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर, अमर तामकर, दिलीप वर्मा, राजू तामकर, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनोजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और मम्मी पापा, नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे, गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रूपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूरजहां रहीम, शरीफ खान, रूबीना, अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत

कौर और सहजप्रीत सिंह, बदलापुर जिला ठाणे महाराष्ट्र से सिद्धांत गवाहनकर, प्रणीता अर्जुन, टुकटुक प्रिंस और एकांश गवाहनकर, मेहरे नगर अमरखेड़ विदर्भ से डॉ वैशाली शैलेश गवाहनकर, श्वेता सुजीत गवाहनकर, ध्वनि और सरिता अभिजीत गवाहनकर, सावंगी महाराष्ट्र से गजानन जिरवार, प्रकाश निजीभा और मिथिलेश जिरवार, विनायक नगर निजामाबाद तेलंगाना से ज्योति श्रीहरि कूचन, राजकमल सिनिग्दा, विनोद कुमार, ग्रीष्मा रामनंदन और समस्त कूचन परिवार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचे तुम, सोनू और मोनू। दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुजतबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यूरी प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी। तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी?
2: अब क्या है
4: रमेश बाबू? आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकाले सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
2: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
2: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होते बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही है।
2: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
4: मुझे इतना टेम कहाँ जो गप्पे मारू, चलती हूँ। राम राम।
2: अपना खून? इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं माँ नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी हूं मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
5: ललिता इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
2: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी।

0: और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
1: इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
0: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
1: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
0: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी न हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
1: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ न कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी न माने तो आभागा।
0: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
1: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
0: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
1: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
2: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
1: ये बिहारी बाबू का घर है।
2: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइड ठीक नहीं दिखती।
1: आपको किसकी शादी करनी है?
2: अपनी?
1: हा?
2: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
1: ठीक है ठीक है।
2: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
1: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता, देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
2: शगुन नहीं, बांकेलाल। बांकेलाल, मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
0: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं, तब तो बात बन गई।
2: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
1: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
2: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
1: क्या आपकी माँ बीमार है?
2: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है। हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
0: हाँ सो तो है। बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
2: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
1: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
2: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला। पर माँ कहती है शादी कर ले।
0: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
2: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैला दूंगा। हाँ बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
1: अरे, अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा। हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
2: अरे कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
1: ललिता एक फोटो तो दे दो।
2: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
0: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।

0: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
1: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है, समय का सही उपयोग करना चाहिए।
0: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
1: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
0: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
1: यही सही समय है।
0: कैसा समय?
1: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
0: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था। शायद बी ग्रुप है।
1: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
0: कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
1: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
2: प्यारी, चाय ले जा।
1: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
0: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
1: आखिर क्यों?
0: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
2: अरे भाभी, हो जाए, सब ठीक हो जाए।
0: प्यारी, तो चुप रहे। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं?
1: अच्छा, लीजिए चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
0: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनिमिक हूँ।
1: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनिमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियाँ शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
0: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
1: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
0: शायद अब वो समय नहीं है।
1: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
0: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
1: इतने रुपए थे, भाई अभी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
0: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
1: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
0: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
1: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
0: मगर कौन समझता है इस बात को? 3 जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
2: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को।
1: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
0: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
1: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
0: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हम फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बंधनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
1: बहुत बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
0: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
1: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
2: दीवी जी, हाँ? जी बात पर ले आऊँ गर्मा गर्म चाय।
1: अरे चाय ही नहीं, मिठाई। अभी जा, फौरन तौर पर जा।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं। अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्पी पुष्पी कर रहे हैं।
1: हाँ इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है, अभी तारों को पाने के लिए तू ऊपर उड़ेगी। मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ, सुन रही है वहाँ शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार? घर में आई नववधू का भी उसका ख्याल नहीं?
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्में हैं। पति कैसा भी हो, इस डोर में बनने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
0: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों? क्यों नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वह वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
0: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई?
2: कौन जो आ गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ पास आओ। ये सिर क्यों ढक रखता है?
0: नहीं मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
0: वो ठीक कह रहे थे, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: तुम नहीं होगी तो मैं ही आ जाता।
0: ना ना मैं बीच में

0: ये तकिया रखे देती हूँ।
1: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी
1: सीमा। अच्छा, अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
1: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
1: बहुत अच्छे है। अब क्या कर रही हो?
0: अब बेणी में फूल गूंथ रही हूँ।
1: ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया ना।
0: ये फूल बसंत ने दिया।
1: मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह!
0: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर? मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
0: क्षण-क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है। मैं रति हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर, मैं तो फेंक रहा हूँ।
0: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
1: अरे सीमा की कोई बात नहीं ना, मैं हर किस रुक नहीं सकता।
0: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं भूले जिंदगी।
1: तुम क्या सोचने लगे हैं? देखो, अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
0: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं?
1: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तब तो तुम बहुत ही सुंदर हो गए। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज कोर्ट भराई होनी है ना, मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी,

0: अरे नीमा दीदी कहाँ गई?
1: आंगन में गई हैं। लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
0: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा दीदी,
1: नीमा दीदी,
2: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कित्तों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूँ। अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहाँ, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो बल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
1: अरे नीमा बीबी तो बड़ा आवाज पड़ी हैं।
0: बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
2: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
0: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
2: नहीं नहीं भाभी, आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
3: मैं चलूं तुम्हारे साथ?
2: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी।
1: हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है, फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं, तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूँ? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
0: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
1: तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो।
0: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
1: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
2: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा?
1: वो
2: सामने लेटर बॉक्स में डाल दो।
0: फिर क्या होगा?
1: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
0: मुक्ति?
1: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है,
0: जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।

0: संगीत के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: नहीं
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल,
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरे।